0: CCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: நிகழ்ச்சியில அடுத்த பாடலை கேட்டிருக்காங்க அசாமை சேர்ந்த ஹிதேந்திர தாஸ் அவர்கள். யாரடி நீ மோகினி திரைப்படத்தில இருந்து.
2: Can you feel her? Is your heart speaking to her?

0: PCP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: இந்தியாவில் சுமார் 20 கோடி டூ வீலர்ஸ், 3 கோடி

0: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। आज का प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और आज के हमारे संदेश टू सोल्जर्स के बहुत ही विशेष अतिथि हैं कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन, और हम उनका स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे इस खास शो में। कर्नल कंवर भारद्वाज जी, बहुत बहुत

0: नाम है शाहिद और आज के हमारे संदेश टू सोल्जर्स के बहुत ही विशेष अतिथि हैं कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन, और हम उनका स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे इस खास शो में। कर्नल कंवर भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय निकाला और आज आप हमारे शो में शामिल हुए हैं। हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आप हमारा शो लाइव सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में, और आप हमें मैसेज करके कर्नल कंवर भारद्वाज से सवाल कर सकते हैं, कुछ बात करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और हमारे साथ आज के बहुत ही विशेष अतिथि जिन्होंने देश को देश की सेवा में दो पीढ़ियों से ज्यादा की सर्विस दी है डिफेंस सर्विसेज में। कमीशन किए गए कर्नल कंवर भारद्वाज इंडियन आर्मी में 11 जून 1967 को राजपुताना राइफल्स इन्फेंट्री में। 1971 वॉर वेटरन हैं कर्नल कंवर भारद्वाज। 1971 वॉर में उन्होंने कंपनी कमांडर के तौर पर लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और किस तरह से शुरुआत हुई वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बातचीत शुरू करते हैं हमारे आज के खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज से। सर, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हुई शुरुआत आपका, या परिवार में कोई बैकग्राउंड नहीं था आर्मी से, आप किस तरह से जुड़े, कैसे वो जज्बा आपके दिल में आया?
1: मैं अपने बारे में बताने से साथ ये भी कहूंगा कि मैं एक बहुत ही जमींदार फैमिली का तीसरे नंबर का बेटा था
0: जी,
1: और मेरे पिताजी जो थे वो एक फार्मर थे, और उसमें जो मैंने मैट्रिकुलेशन किया वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके
0: ओके,
1: और आर्मी ज्वाइन की एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: और टेक्निकल रेजिमेंट सिग्नल्स के अंदर मेरा एंट्री हुआ व्हेन मेरी उम्र केवल 17 साल 216 दिन की थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय हम सिग्नल्स के अंदर रिक्रूट भर्ती किए गए थे
0: जी,
1: और वहां भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग वगैरह खत्म किया और उसके बाद में हम जालंधर पोस्टिंग हो गए एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: ये फौज के बारे में मोटिवेशन इतना कुछ नहीं था, एक जमींदार फैमिली से होने के नाते कॉलेज से भागकर,
0: अच्छा,
1: फर्स्ट ईयर कॉलेज से भागकर हम आर्मी के अंदर ज्वाइन किया
0: जी,
1: और अपना मोटिवेशन यही था कि हम आर्मी के अंदर किस प्रकार से नौकरी करें
0: जी। सर, आप एक जमींदार एक किसान परिवार से आते हैं, आपके पिताजी किसान थे, तो आपका किस तरीके से वो परिवेश रहा और अचानक फिर ऐसे आपके दिल में जो जज्बा आया फौज ज्वाइन करने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए, तो ये कहां से मोटिवेशन, जैसे आपने बताया
1: कि हमें ये बहुत ही एक अजीब सी बात है कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नौकरी करूं।
0: अच्छा।
1: बट जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ी रहा था गवर्नमेंट स्कूल गढ़ी अरसरू में
0: जी,
1: उस समय मेरा इंगेजमेंट हो गया।
0: अच्छा।
1: और इंगेजमेंट से डर के शादी नहीं करें। अच्छा। अभी कॉलेज से भाग करके और बगैर बताए पेरेंट्स को हमने आर्मी ज्वाइन कर ली।
0: अरे वाह।
1: और आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब पता पड़ा हमारे पिताजी को कि हम
0: फौज
1: में जा रहे हैं तो पूरा परिवार बहुत नाराज था
0: जी,
1: और पिताजी ने आकर के काफी कुछ कोशिश की, क्योंकि जो मेरी वाइफ जो शिक्षा भारद्वाज जो अभी नहीं है वो उनके ताऊ जी वहां पे हेड क्लर्क पोस्टेड थे।
0: अच्छा।
1: सोल्जर बोर्ड में, और गुड़गांव में जब मैं भर्ती हुआ तो मेरे फादर जो है वो उनके ताऊ जी के पास पहुंच गए और मेरी कंप्लेंट की कि भर्ती होके जा रहा है, इसकी शादी वगैरह अरेंज कर रहे थे तो इसको रोको। तो मैंने बड़े रौब से बगैर ज्यादा कुछ बोलते हुए अपने फादर का बहुत रिस्पेक्ट करता था और गर्दन नीचे करके और अपने जो वुड बी फादर इन लॉ को भी ये बोल दिया कि जी फौज में जाना मेरे को अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू गो एंड ज्वाइन द आर्मी ओनली
0: जी। तो आप डिटरमिंड रहे, आप मजबूत रहे कि मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी ही है।
1: एक्चुअली ये था कि टेंथ करके अगर कॉलेज में आगे नहीं पढ़ना है
0: जी,
1: और जोश था कि आर्मी ज्वाइन करें, क्योंकि आर्मी उस टाइम पे नंबर वन प्रोफेशन होता था आज के जमाने को ना कहते हुए, एंड आई हैड द इंसिस्टिंग टू माई सेल्फ इन दैट फीलिंग, इससे बढ़िया नौकरी कुछ नहीं हो सकती।
0: अच्छा। सर वो कौन सा साल था जब आपने ज्वाइन किया?

0: Yeah.
1: It was 1961.
0: 61.
1: Yeah. And I was posted rather first training center Jabalpur.
0: अच्छा.
1: और वहाँ पे इतना ज़्यादा लड़ा हुआ.
0: अच्छा.
1: और जो मेरे वुड भी फादर इन-लॉ थे उसने जाते समय वार्निंग दे दी थी कि अगर जा ही रहे हो बगैर हमारे बताए मर्जी के तो वहाँ जाकर के फिर ये मत बोलना कि आप हमारा नाम कटवा.
0: अच्छा अच्छा अच्छा. मतलब ऐसा नहीं कि आप पीछे हट जाए.
1: और जिस काम से मैं भागा था
0: जी,
1: जिससे शादी ना करने के डिले करने की शादी से भागा था, जब मैं रिक्रूट ही ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे को 10 दिन की छुट्टी बुला करके और मेरी शादी भी हो गई.
0: अच्छा.
1: व्हेन शी वाज 14 इयर्स एंड आई वाज 18 इयर्स ओनली.
0: ओके.
1: बिकॉज आई ज्वाइंट द आर्मी व्हेन माय एज वाज ओनली 17 इयर्स 216 डेज.
0: अच्छा. आप पूरे 18 के भी तब तक नहीं हुए थे
1: जी.
0: और आपने अपनी सर्विस जो है नेशन के लिए, आर्मी के लिए, फोर्स के लिए देना शुरू कर दिया था
1: जी.
0: जी. तो सर शुरुआत किस तरह से हुई? आप इन्फेंट्री में रहे, राजपूताना राइफल्स में रहे, तो यही शुरुआत थी या इससे पहले भी आपने किसी और जगह भी काम किया आर्मी में?
1: एक्चुअली जब सिग्नल्स के अंदर हम जवान थे
0: जी,
1: तो वहां हमारी पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग वगैरह खत्म करने के बाद में.
0: अच्छा.
1: जालंधर अलर्न कोर सिग्नल रेजिमेंट, उसके अंदर पोस्टिंग हो गई. एंड व्हेन आई वाज देयर 1962 का चाइना के साथ वार.
0: अच्छा,
1: हुआ
0: जी.
1: सो दैट टाइम हम जवान थे.
0: अच्छा.
1: तो पूरी रेजिमेंट के अंदर काफी तहलका मचा हुआ था और हम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जवान बन गए थे वहां पे. और 62 का ऑपरेशन के बाद में
0: जी
1: इमरजेंसी कमीशन स्टार्ट हुआ.
0: अच्छा.
1: तो इमरजेंसी कमीशन के दौरान
0: जी
1: मेरे को स्पेशली एक अच्छा जवान सेलेक्ट करके.
0: अच्छा.
1: और कमांडिंग ऑफिसर के साथ में कुछ एक कैंडिडेट से जिनका इंटरव्यू कैंडिडेट करके और कर्नल साहब को जो हमारे सीओ थे उस समय
0: जी
1: उनको स्क्रीन आउट करना था कि इनको हम आगे एसएसबी के लिए रिकमेंड करें.
0: अच्छा.
1: सो वो बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट है विच यू वुड लाइक टू नो.
0: जरूर सर जरूर.
1: मेरे को ये ड्यूटी दी गई कि सबको बारी बारी कमांडिंग ऑफिसर साहब के अंदर ऑफिस में भेजते रहिए और इनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके एंड डू दैट फुल
0: जी.
1: सो सीओ साहब 1:30 बजे लंच ब्रेक के लिए घर चले गए और जाते समय बोल गए कि मैं 3 बजे वापस आऊंगा और 3 बजे के बाद में बाकी कैंडिडेट का हम इंटरव्यू करेंगे.
0: अच्छा.
1: 3 बजे वो सही डॉट 3 वापस आ गए तो फर्स्ट कैंडिडेट को हमने बोला कि आप अंदर जाइए. तो वो अंदर गए तो उन्होंने अंदर जाते ही बोला गुड मॉर्निंग सर.
0: अच्छा.
1: तो सीओ आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द टाइम. 3:05 सर.
0: अच्छा.
1: तो वाई आर यू सी मी गुड मॉर्निंग सर. तो ही सेड के सर वी हैव बीन टोल्ड इन द सिविल इफ यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम यू मस्ट विश हिम गुड मॉर्निंग. बोलता इफ देर इज एनी हार्म इफ यू विश मी गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग. बट सर वी हैव बीन टोल्ड द सिविल लाइक दैट. ही पुट अप सम अदर क्वेश्चन टू हिम ऑल्सो. सो ही वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई इट प्रॉपरली. Then he called for me.
0: जी.
1: I entered, I saluted him, and he put up all those questions to me. And straightway, जहाँ ही वो ऐसे सवाल सारे मैं फटाफट जवाब दिया
0: जी.
1: तो कर्नल साहब ने मेरे को तो चेयर ऑफर कर दिया और उसको बोला थैंक यू.
0: अच्छा.
1: कैरी ऑन.
0: और आपको
1: एंड ही इंसिस्टेड मी और रादर मोटिवेटेड मी यू ट्राई फॉर कमीशन. व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर कमीशन. आई सेड सर आई एम नॉट ग्रेजुएट. आई एम मैट्रिकुलेट ओनली. आई एम नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन टू अप्लाई फॉर द इमरजेंसी
0: क्राइटेरिया.
1: एंड ही टोल्ड मी दैट ओके क्राइटेरिया नहीं है अभी तो आप एसीसी के अप्लाई करिए. यू अप्लाई फॉर आर्मी कैडेट कॉलेज एंड आई सी दैट यू गेट सिलेक्टेड. एंड माइंड यू आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक. देयर वर 63 कैंडिडेट्स फ्रॉम माई रेजिमेंट दोज हु अपीयर्ड फॉर इनिशियल आर्मी कैडेट कॉलेज. All that test and all that, I was the first one to get selected out of 3 candidates out of 63 जो के SSB तक पहुंचे.
0: तो ये मोटिवेशन सर आपको
1: ये मोटिवेशन दैट वे आई गॉट मोटिवेटेड एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक. आई हैड वेरी गुड कैरियर थ्रू आउट माई आर्मी कैडेट कॉलेज देन IMA एंड व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम देयर You asked me that how you got into infantry, that to Rajputana Rifle. So on that I just tell you कि वहाँ पे जो मेरे कंपनी कमांडर थे IMA के अंदर वो राजपूताना राइफल से मेजर शर्मा साहब थे.
0: अच्छा.
1: जो कि वार वेटरन थे और VRC डेकोरेट थे.
0: अच्छा.
1: So I was very outstanding. Mind you, I must be proud of telling you also.
0: बिल्कुल सर.
1: I have played volleyball national level
0: national
1: and basketball step down. And I was good boxer.

0: क्रॉस कंट्री रनर ऑफ द टॉप क्लास इन एकेडमी
1: वॉलीबॉल बॉक्सिंग और रनिंग क्या बात है
0: एंड वॉलीबॉल नेशनल लेवल समथिंग वेरी
1: वॉलीबॉल
0: सो ही वाज सो इम्प्रेस्ड एंड ही वांटेड मी टू गो टू हिज रेजिमेंट ओनली एंड दैट्स व्हाई वेयर इज माय सीओ दैट टाइम हु गॉट मी सिलेक्टेड फॉर एसीसी ही वांटेड मी दैट आई शुड ज्वाइन सिग्नल्स बट आई गॉट इनटू राजपूताना राइफल्स एंड आई वाज माइटी हैप्पी टू बी विद द राजपूताना राइफल्स
1: तो सर आपको ज्यादा मजा किसमें आया मतलब आपको लगता है कि राजपूताना राइफल्स ही आपके लिए जो है एक ड्रीम था
0: देखिए ऐसा मैं बताएं कि आर्मी ज्वाइन करना एज ए मैटर ऑफ प्राइड एंड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर एज ए डबल मैटर ऑफ प्राइड एंड इफ यू गेट इन टू इन्फेंट्री नथिंग लाइक दैट
1: अच्छा
0: एंड अमोंग इन्फेंट्री राजपूताना राइफल्स
1: टॉप
0: इज अ टॉप
1: अच्छा
0: एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ दिस आई गॉट इन टू राजपूताना राइफल्स
1: क्या बात है सर
0: यू नो माई एल्डर सन इज ऑल्सो फ्रॉम राजपूताना राइफल्स
1: यस सर
0: एंड
1: जी
0: दैट बॉय ऑल्सो बिकॉज राजपूताना राइफल्स इज वन ऑफ द वेरी गुड रेजिमेंट
1: जी
0: एंड ही इज द वन
1: जी क्या बात है सर हम आगे सर आपसे बात करेंगे और हम 62 जैसे आपने बताया हम 71 की बात करेंगे क्योंकि आप वॉर वेटरन रहे 1971 वॉर के तो हम उस पर भी बात करेंगे और कुछ आपसे इंटरेस्टिंग कहानियां भी जानना चाहेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम और अपने लिसनर से बताना चाहेंगे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमारे आज के हमारे खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं और 1971 वॉर वेटरन हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं अपनी बात कर सकते हैं और हमें आप सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप बने रहे हमारे साथ यह देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं। मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और आज हमारे हैं खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे इस शो में।
1: वेलकम, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया आज हमारे साथ। आप जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बता रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनोखी भी हैं और बहुत ही खुशी देने वाली भी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने बचपन से ही किस तरीके से आपके मन में था कि आपको फौज में भर्ती होना है और आपने किसी की परवाह नहीं की और आपने वो मकाम बनाया जो हर इंसान के लिए, सर मैं समझता हूँ कि आसान नहीं होता, जाहिर है बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, तो वही आपने अपनी लाइफ में वो किया, अपने करियर में आपने जो अचीवमेंट्स हासिल की, वो जो मकाम आपने बनाया, तो इसके बारे में आपके कुछ, सर कुछ शब्द मैं चाहूंगा कि आप कहना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं?
1: आई थिंक ऊपर वाले ने जो दिया है
0: जी,
1: जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे भी बहुत अच्छा मिला है। और जो 71 वॉर के बारे में
0: जी,
1: मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बड़ा यंग ऑफिसर था एंड आई वाज मेजर रैंक था मेरे पास में
0: जी,
1: आई वाज कमांडिंग वन ऑफ द कंपनी ऑफ 9th बटालियन राजपूतन राइफल
0: जी
1: इन पुंछ सेक्टर,
0: पुंछ सेक्टर में
1: yeah.
0: जी। तो सर 1971 वॉर वेटरन हैं आप, तो उसके सर हम उस वॉर के बारे में जानना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा रहे हैं, तो वो किस तरीके का सर दौर था, वो क्या हालात थे और जब वो जंग थी तो उस पर आपका और जो जो नेशन उस वक्त जो देश पर में चल रहा था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: देखिए उस समय जो हालात थी
0: जी,
1: मुक्ति वाहिनी वगैरह बहुत पहले से मूवमेंट शुरू हो चुके थे
0: जी
1: ईस्टर्न सेक्टर में, बट नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर पुंछ एरिया स्पेशली उस साइड के अंदर कोई ज्यादा इतनी चहल पहल नहीं थी, लड़ाई की तैयारियां नहीं थी, लेकिन लकली वी हैड ए जनरल ड्यू कमांडर मेजर जनरल कुंदन सिंह
0: जी,
1: ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम राजपूतन राइफल्स एंड ही हैपन टू बी ए वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग जनरल हु रिटायर्ड एज एमएस लेफ्टिनेंट जनरल, ही वॉज द वन हु पुल्ड अप द कम्प्लीट डिवीजन एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी और एनी वॉर टाइप थिंग एट दैट टाइम
0: जी।
1: सो ही वॉज द वन एंड आई वॉज with the Bravo company commander
0: Achha.
1: in Punch sector where Punch is other side of the Punch river and Achha. we were the other side of the this side of the Punch river and
0: Achha. other Achha. side of the
1: हम इस साइड में थे
0: अच्छा,
1: और पुंछ के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट होता है एंड आई वॉज फेसिंग द पाकिस्तानीज अपोजिट माई पोस्ट अक्रॉस द रिवर पुंछ रिवर,
0: मतलब आमने सामने की
1: आमने सामने थे
0: बिल्कुल,
1: और उनके पास में वहां पे आरसीएल गन लगी हुई थी
0: अच्छा,
1: और एमएमजी लगी हुई थी
0: okay.
1: वो डायरेक्टली हमारे अंडर व्यू थी, दे कुड फायर एट अस एंड वी कुड फायर एट देम
0: अच्छा बिल्कुल, आमने सामने
1: आमने सामने फ्रॉम दैट टॉप एंड आई हैड यू नो कंपनी वॉज डिप्लॉयड ऑन 3 पोस्ट
0: अच्छा
1: एंड आई वॉज ऑन द मिडिल पोस्ट, फ्रॉम मिडिल पोस्ट जो पहाड़ी का था
0: जी
1: उस

0: से हम पूरी कंपनी को अपना कंट्रोल करते थे और सामने से फायर वगैरह आते थे। चार तारीख फोर्थ ऑफ दिसंबर
1: जी
0: फायरिंग स्टार्ट हो गया। तो फायरिंग स्टार्ट होने के बाद में पूरी रात हम लगभग लड़ाई लड़ते रहे और जो ही फायरिंग स्टार्ट हुआ तो माई एक्शन वॉज कि मैंने पूरे जवानों से मिलकर उनको हौसला बढ़ाना है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली व्हेन द फायरिंग वॉज गोइंग ऑन आई नेवर बॉदर्ड। फर्स्ट आई वेंट टू अदर पहाड़ी अदर जो कि मेरी पिकेट थी ऑलमोस्ट अबाउट किलोमीटर अदर साइड ऑन द अपहिल ऑफ द माउंटेन एंड आई मेट ऑल द पर्सनल एंड जवानों का हौसला बढ़ाते देन आई वेंट टू द अदर पिकेट एंड देन टू माई ओन पिकेट एंड कम्प्लीट नाइट आई वॉज एक्टिव विद दैट
1: मीटिंग द पीपल
0: पूरी रात रही। एंड व्हेन आई वेट करते रहे व्हेन आई यू नो वी हैव द कमांड पोस्ट एंड कमांड पोस्ट इज सॉर्ट ऑफ ए वेरी वेरी सॉलिड बंकर फ्रॉम वेयर यू कुड ऑब्जर्व एंड देन डायरेक्ट द फायरिंग एंड अदर थिंग ऑल्सो एंड कमांड योर कंपनी ऑल्सो। सो फ्रॉम द कमांड पोस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग इट वॉज गोइंग टू बी डे लाइट आई गॉट आउट फ्रॉम माई कमांड पोस्ट and was going for a pee place
1: ji
0: to a toilet
1: ji
0: and the toilet was you know all temporary
1: ji bilkul
0: tin ke no tarmac ke tin hote hain drum usko cut karke ek bade se patthar ke sath mein
1: usko banaya jata hai
0: banaya gaya
1: theek hai
0: temporary type
1: ji
0: so I was going to that one so you know bunker to bunker or we have the communication trenches are the you know sort of say about 5.5-6 feet deep
1: now
0: through which you can walk
1: उसके बीच में से आपको गुजर के जाना होता है
0: चल के जाना होता है
1: जी।
0: so when I was walking to toilet and then climb up and get out from that one
1: जी
0: that time there was a sound of a RCL fire
1: अच्छा
0: when the RCL fire came तो my operator was with me
1: जी
0: एंड ही वॉज कमिंग आउट विद मी कि मेजर साहब कहाँ जा रहे हैं तो वो मेरे साथ जो ही निकला उसने सुना कि अब फायर हो गया आरसीएल और इसने मेरा हाथ पकड़ के और पीछे गिरा दिया
1: अच्छा
0: और बोला और सब मरोगे एंड इन द मीन टाइम द आरसीएल बम हिट दैट टॉयलेट वॉज इट वॉज थ्रोन अप इन पीसेज एंड द बिग द रॉक ओवर देयर इट वॉज ऑल ब्लोन अप एंड वी वर really in danger and it was a good luck of mine
1: कुछ seconds
0: thank
1: कहीं सिर्फ
0: yes
1: आप मतलब वो जो सामना होने वाला था
0: it would have been entirely different thing I would have been pieces not sitting in front of you today
1: बिल्कुल
0: so that was the one then what happened next day early afternoon we got a order that you have to move out to another battalion that is Banwat sector and defend a company of other Chesik which was in danger which was attacked that night next night they were to be attacked
1: जी.
0: so that one of the FDL behind that is number the FDLs were numbered at 405 406
1: अच्छा
0: so 406 was in danger it was encircled by the enemy
1: अच्छा
0: so I was told that your company will go and reinforce 405 picket so that you we could fight back the enemies so I moved my company before last light to the that side towards Punch we had to go across the Punch river then Punch township is there pass through that place and they climb up almost about 2000 square feet I say and the brigade headquarters was at the Punch river
1: अच्छा
0: पुंछ हेडक्वार्टर द ब्रिगेड वन
1: जी
0: सो देयर वाज अ झूला ब्रिज व्हिच वाज टू बी क्रॉस्ड
1: अच्छा
0: जो बाय वी पीपल द झूला ब्रिज ऑन पुंछ वाज द वन व्हिच वाज अ वुडन टाइप एंड यू नो ओनली इट वाज ओनली फॉर टू व्हीलर्स
1: अच्छा और या फिर पैदल चल के जाने के लिए जी
0: सो आई वाज कॉल्ड बाय द बटालियन कमांडर फॉर द ब्रीफिंग सो विद माय स्कॉर्ट two escort and what do you call operators
1: ji
0: we went to the battalion commander and he briefed me that you have to go and do this work Chesik was the battalion which was deployed that side at 405 406 and you have to go and clear the saddle between Black Rock between these two FDLs
1: acha
0: ठीक है।

0: then join the company which is fighting, which is likely to fight this night or next
1: day. जैसे आपने बताया कि उधर से अटैक हो रहा था और
0: हाँ जी उनको जाके आपने
1: रीइन्फोर्स करना है.
0: सो आफ्टर ब्रीफिंग आई हैड टू आई गॉट ए आरसीएल जीप.
1: अच्छा.
0: आई विद माय स्कॉट एंड ऑल दैट गॉट इनटू आरसीएल जीप व्हाइल मूविंग डाउन टुवर्ड्स दैट ब्रिज.
1: अच्छा.
0: ट्रैफिक वॉज टू मच बिकॉज दैट टाइम द ऑल कॉन्वॉयज loaded with the ammunition, all that artillery convoys, those were the all lined up on the road. Mm-hmm. And my jeep was not able to get through, so I got on my feet.
1: Achha.
0: With my with my
1: escort
0: and all that.
1: Achha.
0: And I went around say 3 to 5 kilometers walking. When I reached to the Jhula bridge, I found my company was stuck over there. They were all in position.
1: Mm-hmm.
0: And firing was going on from both the sides.
1: अच्छा. जिस वक्त आप पहुंचे उस वक्त भी ये सब फायरिंग.
0: मेरी बाइक मेरी जो कंपनी थी वो पुंछ रिवर के इस तरफ झूला ब्रिज के इस तरफ
1: अदर झूले के उस तरफ झूला ब्रिज के उस तरफ जी
0: पुंछ के परली तरफ से भी फायर आ रहा था और इधर से ये लोग भी फायर कर रहे थे. सो आई हैड टू रादर टू सबाल्टर्न टू यंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट वार्डने एंड लेफ्टिनेंट मल्होत्रा
1: जी
0: एंड जेसीओज वर देयर. कंपनी जैसे से मैंने पूछा कि रंजीत साहब फायर क्यों हो रहा है
1: जी.
0: रंजीत साहब ये फायर क्यों हो रहा है
1: जी.
0: तो उन्होंने बताया सर उधर सामने से फायर आ रहा है. मैंने कहा फायर क्यों किया. बोल सर ऐसा है झूला ब्रिज के ऊपर से 3-4 लोग आए थे.
1: अच्छा.
0: और जब वो आने लगे उतर रहे थे तो हमने उनको चैलेंज किया तो उन्होंने पासवर्ड नहीं दिया और वो भागने लगे. तो भागने लगे तो हमारे जवान ने फायर कर दिया. मैंने बोला तुम्हारे को बताया था ऐसे तो हरकत नहीं करना वहां जाके कंपनी को पोजीशन दे देना मैं आके ज्वाइन करूंगा आपको. तुमने फायर क्यों खोला. बोले सर हमने सोचा एनिमी है तो जवानों ने फायर खोल दिया. मैं क्या ऑर्डर किसने दिया. बोले साहब मैंने दिया था. मैं चलो कोई बात नहीं है. देन आई कॉन्टेक्टेड द ब्रिगेड BM.
1: अच्छा.
0: आई सेड माई कंपनी टू क्रॉस झूला ब्रिज एंड गो टू बनवट सेक्टर टू हेल्प आउट सेसिक एंड हु इज फायरिंग फ्रॉम अदर साइड. देयर वॉज 80 कंपनी. 80 कंपनी दोज आर यू नो विद द एनिमल्स म्यूल्स एंड ऑल दैट. दे थॉट के देयर इज एनिमी टू अदर साइड एंड दे आर फायरिंग टुवर्ड्स अस एंड वी आर फायरिंग दैट साइड.
1: जी सर एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा जब ये सिचुएशन आप देख रहे थे अपने सामने तो वो क्या फीलिंग्स होती हैं आप फायरिंग के बीच में जब जा रहे हैं दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और वो वॉर का समय है तो क्या वो जो सिचुएशन होती है उसको किस तरह से फेस करते हैं.
0: जो फीलिंग होती है जो फीलिंग होती है
1: जी
0: वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है. हम तो इतने जोश में होते हैं कि कुछ हमको लगता ही नहीं है. हम तो पता है हम जीतेंगे हम मारेंगे अपने जो भी हमको ऑब्जेक्टिव मिला है जो टास्क मिला है उसको पूरा करेंगे. अभी बताता हूँ आगे क्या क्या हुआ. तो BM साहब ने बोला और 80 वाले मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपना कंपनी को लेके क्रॉस करिए और आप पहुंचिए जल्दी से. सो you know climb was quite big when the firing stopped.
1: Achha.
0: I moved my company across the Jhula bridge then started climbing up. So climbing up all that toward that Malhotra platoon was leading and where we come in single line.
1: Achha.
0: Track ke upar jaise pahadon ke chadte hain to single line pe ja rahe the. Everybody was tired and it was going to be early morning. Achha. But before first light I was to reach
1: puri raat ko aapko chadhai chalni thi.
0: Before first light I was to do the operation also. That was my task.
1: Because
0: if it was the daylight, then I wouldn't be able to do the needful.
1: बिल्कुल. तो इतनी tough climbing के बाद आपको operation भी अपना शुरू करना
0: complete करना था.
1: बिल्कुल.
0: So when we are nearing that objective, the 405, the 405 was the headquarter of CSIC, and the CO was there.
1: अच्छा.
0: And you enter all those people, those who have the tail men, those control करते हैं. तो मेरे को उनको जाके ब्रीफिंग लेना था. उनसे ब्रीफिंग लेने के बाद मेरे को ऑपरेशन करना था. सो टाइम वाज रनिंग शॉर्ट. तो व्हेन आई फाउंड के आगे से वो बैठ गए सारे
1: जी.
0: तो मैंने जाके जवानों से पूछा क्या हुआ. मोल साहब मल्होत्रा साहब आगे बैठ गए. आई कॉट होल्ड ऑफ मल्होत्रा फ्रॉम हिज नेक एंड आई टोल्ड हिम व्हाट्स द रॉन्ग विद यू व्हाई यू स्टॉप्ड. बोले सर टायर्ड. मैं कह यू गेट बैक एंड आई वॉज द वन टू लीड द कंपनी reached to the 405 FDL and I met the CO. CO briefed me. I requested CO, okay, sir, give me 2 escort, those who can tell me where, from where the fire is coming.
1: जी.
0: So that my jawans can attack that one

0: and I don't suffer casualties.
1: Ji.
0: So when he told me that, okay, Major Swain is the company commander, Ji. And you take two Johns from him, they will tell you ke from where the fire is coming. So when I went to him, Major Swain said, no, I am already under the attack, and I will not be able to give anything. So I walked back to commanding officer
1: Ji.
0: Of Chesik, and I said, sir, your company commander is not giving me escort. Then he said, okay, the task is given to you. Make a well, Colonel so-and-so, you are talking to the company commander of 9th Battalion, Bravo Company, and I'll see that my task is completed before the first light, and I'm going. So his adjutant came running with me, and he asked that Major Swain to give me escort, and I put up an attack sort of thing, I should say.
1: Ji.
0: We had to go down. We had to go down in the valley.
1: Achha.
0: And climb up again. And then there was a black rock. From there, the MMG and LMG of Pakistanis, they were firing. There were a number of mules. Those were killed, and one of the casualty was there. Other people were also injured in that valley.
1: Ji.
0: But before the first light, I was able to climb up. And that the enemy left his that location.
1: Achha,
0: leaving some ammunition in one of the... They ran away from there.
1: Ji.
0: And I joined Major Punjab and Major Padda over there. And there were 36 Pakistanis, those were killed by that company that night itself. So next morning, we picked up all those dead bodies of them. I had breakfast, hot breakfast with the Major Punjab and all.
1: Achha.
0: And then... Next task was given to me to go to help out other company, because I was one of the outstanding company commander and outstanding company in the complete division.
1: Ji.
0: With my young Joes and all that. And I had stood first in one of the competition which was conducted at the Div level at the Div headquarters at Rajouri. And the Div commander himself has given this praise to of mine that Bravo Company Commander Major K.S. Kamar Bhardwaj is one of the outstanding officer in competition training we had in the Div Battle School.
1: Ji.
0: So that was the reputation sort of that thing.
1: Bilkul sir, aapki wo josh aur jazbe se bhara hua wo jo moment raha usme aapne itna bada usme jo hai contribution diya, role play kiya, to wo waqai yaadgar hai aur jaisa ki aapne bataya ki wo aapki yaadon mein juda hua hai hamesha ke liye. और वो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में हमेशा के लिए वो जुड़ा हुआ है.
0: जो अभी आप बात कर रहे हैं, अभी वैसा जोश आ रहा है, अभी भी मैं उसी लड़ाई, उसी पहाड़ और उसी ब्लैक रॉक जिसको मैंने जाके कैप्चर किया और वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सामने अभी से मैं फिर से जवान हो जाऊं.
1: आप उन यादों में पहुंच गए और मैं आपके साथ उन यादों के साथ ही वहां पर पहुंच गया आपकी बातों में. मुझे महसूस हो रहा था कि मैं वहीं आपके साथ पीछे पीछे चल रहा हूं आपकी बातों में और आपकी यादों में जहां आप वॉर फ्रंट पर थे और आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे.
0: Say it's very nice to talk on that line.
1: जी. और सर इसके बाद भी हम आगे आपसे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि हम और भी चीजें आपसे जानें, जैसे आपने 1971 वॉर की आपने जो इंसिडेंट बताया, यादगार कुछ लम्हे आपने शेयर किया हमारे साथ. सर आर्मी सोल्जर्स ने सिर्फ वॉर फ्रंट पर ही नहीं, उसके अलावा अलग अलग स्ट्रीम्स में भी, स्पोर्ट्स में भी गोल्ड और अदर मेडल्स भी जीते हैं, तो आर्मी का कितना बड़ा रोल रहता है? वो हर तरह से, जैसे कि आपने भी कहा, आप नेशनल लेवल चैंपियन भी रहे, वॉलीबॉल के बॉक्सर भी आप रहे, आप एक बेहतरीन रनर भी थे, तो आर्मी इन सब चीजों में भी आगे रहती है हमेशा, वो वहां भी कीर्तिमान स्थापित करती है.
0: राइट फ्रॉम द डे वन.
1: जी.
0: फिजिकल साइड हैड बीन माय द बेस्ट, आई से माय स्ट्रेंथ एंड देन माय मोटिवेशन, माय एम, डिटरमिनेशन, ऑल दोस थिंग्स. Today I can say again that I am self-made man is in
1: Bilkul.
0: Front of you.
1: Okay.
0: From that background of a farmer family, at my own, without any sipares or without any recommendation or bribe or anything,
1: Bilkul,
0: I was the one to do all these things.
1: बिल्कुल. आपने बिल्कुल grassroot level से शुरुआत की और आपने जो achievement हासिल करी वो आपकी अपनी earn की हुई है, अपनी मेहनत से आपने वो जो एक मकाम हासिल किया.
0: You will be proud to tell you that मैंने जब बटालियन में कदम रखा तो अपने आप को बटालियन में किसी जवान से कम नहीं समझा, मेरे फिजिकल में इतना दम था।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और आज के हमारे खास मेहमान आज के शो में कर्नल कमर भारद्वाज सेना मेडल से सम्मानित वॉर वेटरन हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम उनकी कहानी सुनकर के खुद भी जोश से अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हैं। सर यहां पर मैं आपसे जो भी अभी अब तक मैंने बात की आपके बारे में बात की लेकिन सर एक ऐसी एक शहीद की बात भी मैं यहां पर करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी देश के लिए बलिदान दिया जान की आहुति दी और वो थे कैप्टन उमंग भारद्वाज आपके सुपुत्र जिनको उनके साथी प्यार से टाइगर बुलाया करते थे। तीन सक्सेसफुल ऑपरेशंस उन्होंने किए जिन तीन ऑपरेशंस में उन्होंने 15 ड्रेडेड टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके बाद चौथा ऑपरेशन था वो एम्बुश था 18 और 19 नवंबर 2002 की मिडिल नाइट में। उस दौरान सर 6 टेररिस्ट मार गिराए गए जिनमें से 2 को अकेले उमंग भारद्वाज ने ही मौत के घाट उतारा और सर उसी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बलिदान दिया शहीद हुए वो और उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। सर वो मोमेंट था एक प्राउड मोमेंट भी था लेकिन बहुत ही यंग एज थी उनकी जब उन्होंने शहादत पाई और टेररिस्ट का मुकाबला करते हुए उनको मार गिराया और अपनी भी जान की आहुति दी देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर कैसे याद करते हैं आप?
1: ओह माय गॉड कैसे याद करते हैं। जैसे उसका नाम था ना उमंग
0: जी
1: ही वाज ऑलवेज ए लाइव वायर आई टेल यू हे मेरे लाइफ का वो इतना चाहता बेटा था
0: जी।
1: ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड ही वाज माय बेस्ट गाइड ही वाज माय बेस्ट फादर एडवाइजर व्हाट सो यू कॉल बिकॉज इट हैपन्ड सो कि वो बड़े भाई से 7 साल छोटा था।
0: अच्छा
1: जो उस समय मेजर थे और एनएसजी में इंस्ट्रक्टर थे मेजर राजेश भारद्वाज
0: जी
1: और सबसे बड़ी सिस्टर जो है उनकी वो डॉक्टर सविता है।
0: अच्छा
1: सो उमंग वाज फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम एंड वी नेवर वांटेड टू सेंड हिम टू आर्मी बट ही गॉट सिलेक्टेड इन रिटर्न एंड देन ही वाज टू गो फॉर एसएसबी दैट टाइम ऑल्सो माई सेल्फ और मेरी और उसकी मम्मी शिक्षा भारद्वाज ने काफी कोशिश की कि हम इसको नहीं भेजे बट उसने हमारे को परस्यू करके और उस लाइन पे ले आए कि नहीं मेरे को फौज में जाना है और मैं पहले जाता हूं एसएसबी में अभी हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखते हैं कितना दम है हमारे अंदर। तो वहां एसएसबी में गया एंड ही गॉट सिलेक्टेड बिकॉज पहले तो बोला था मैं ठीक है 5 साल के लगाऊंगा जाएंगे तो शॉर्ट सर्विस में चले जाएंगे एंड ही गॉट इन मेरिट एंड ही गॉट रेगुलर टू ज्वाइन सीएसडी आईएमए ज्वाइन करके।
0: अच्छा
1: तो कमांड डिफेंस सर्विस ज्वाइन क्लियर करके और एसएसबी वगैरह क्लियर करके आईएमए से पास आउट हो गया। दैट टाइम आई ट्राई टू गेट हिम इन द एएससी और एओसी।
0: अच्छा
1: सो दैट टाइम आई वेंट टू आर्मी हेडक्वार्टर one of the officer over there with my friend I had gone to him and I said ki bhai beta pass ho raha hai to major Hudda was there
0: ji
1: he said ki sir usko hum armored corps to aur mechanized infantry nahi de payenge Rajdeep de dete hain I told him main keh raha hu wo mere pe ehsaan nahi kar rahe aap
0: bilkul
1: theek hai to उसको मैं क्या हमने राजीव नहीं चाहिए उसको तो राजीव तो उसका बाप है उसका भाई है तो उसका पेरेंटल हक है वो तो मिलेगा बट वी वांट हिम टू गो टू नेवी व्हाट यू कॉल एएससी और एओसी बिकॉज दैट टाइम देयर वाज सम हिच इन माय माइंड एंड माय वाइफ माइंड कि इसको कहीं खतरा है पता नहीं क्यों ऐसा ही पहले ही लग रहा था।
0: लेकिन सर उस उमंग में आपका वाला ही वो जोश था अपने पिताजी का वो जोश और जज्बा इसीलिए उनके साथ उनको टाइगर कहकर पुकारते
1: थे। I am coming to that one, तो उसको when he passed out and when he came to know कि ये मेरे को एसी मिली है
0: जी
1: तो मैंने वो उसको वो फोन पे बड़ी मुश्किल से बातचीत किया एंड ही वाज क्राइंग ऑन फोन कि डैड मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया व्हाई यू गॉट मी इन एसी आई सेड बेटे आपको 3 साल मिलेंगे अटैचमेंट के लिए उसमें आप हमारी राजनीति मेरी पलटन के साथ या

0: पलटन के साथ में आप 28 मिनट पे आना, अगर आपको राजीव भी चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, अदरवाइज मैं क्या राजीव अगर मिल जाती है या इन्फेंट्री मिल जाती है उसे बाहर निकलना मुश्किल होगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट फ्रॉम देयर एंड वी वॉन्ट टू यू जज अबाउट यूर सेल्फ
1: जी,
0: ही सेड नथिंग डूइंग एंड मेरे ऊपर कोई मेहरबानी मत करना भी, जहां मेरी पोस्टिंग आती है मेरे को जाने दीजिए।
1: अच्छा,
0: ही ज्वाइंट 7 जाट एंड 7 जाट के अंदर गया
1: जी,
0: तो ही वॉज पोस्टेड इन महेंडर सेक्टर एंड नाउ कमिंग टू द ऑपरेशन, ही वॉज सच ए जॉली फेलो एंड फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम, ही कंडक्टेड 3 ऑपरेशन विच यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, और 3 ऑपरेशन के अंदर उसने 5 मार दिए थे। इसमें एक इंसिडेंट और बताऊंगा, एक डी के शाह उसी कोर्समेट, ही वॉज ऑल्सो विद द 7 जाट एंड देर इज ए घातक प्लाटून
1: जी जी,
0: तो दिस बॉय उमंग वॉज डूइंग घातक प्लाटून कमांडर फॉर 1 ईयर एंड ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन ही हैज किल्ड 15 टेररिस्ट
1: जी
0: एंड दीज 4 ऑफिसर दोज जॉइंट टूगेदर 7 जाट दे हैड टेकन ए सॉर्ट ऑफ प्लेज दैट जब तक हमारी पलटन यहां है और हम यहां पर हैं कोई टेररिस्ट हमारे एरिया से
1: जिंदा नहीं जा सकेगा
0: अंदर घुस नहीं सकेगा एंड दैट ही डिड। कैप्टन डी के झा सेक्रीफाइस्ड अबाउट 2.5 मंथ्स अर्लियर दैट इन दैट सेम एरिया एंड उमंग वॉज डूइंग एडिडेंट। उमंग टोल्ड मी इन द नाइट अराउंड मिड नाइट ही टोल्ड मी दैट डैड डी के इज नो मोर। आई से व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, बोलते हुए तो छोड़ो मेरे से ऊपर क्या गुजर रही है, बट उसके ब्रदर है दिल्ली के अंदर एंड हिज बॉडी विल बी कमिंग टू एयरपोर्ट एंड उसके ब्रदर को आपके उसके साथ भेजना पटना एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 आई विल कॉल यू एंड गिव मी रिपोर्ट। दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर फॉर माई यंगर सन एंड द ब्रेव बॉय एंड नेक्स्ट आई डिड ऑल द थिंग्स बिकॉज ही टोल्ड मी कि उसके पास पैसा नहीं होगा, उसकी टिकट वगैरह कर दीजिए और डेड बॉडी के साथ वो उधर से लेके जाएंगे उसे। सो दैट वॉज डन। देन उमंग का जो बताया ऑपरेशन
1: जी,
0: ही वॉज डूइंग एडजुटेंट फॉर 2 ईयर्स, ही वॉज पोस्टेड आउट, पोस्टिंग आ चुका था, ही केम ऑन 10 डेज लीव एंड 10 डेज लीव के वापस जब वापस गया सो ही रीच देयर ऑन द 17th इवनिंग
1: जी,
0: रादर 18th इवनिंग
1: जी, 18th इवनिंग
0: ही रीच देयर
1: जी
0: एंड ही वॉज देयर टू हैव हिज फेयरवेल पार्टीज एंड ऑल दैट एंड पिकअप ए ट्रॉफी एंड गेट आउट फ्रॉम द बटालियन डूइंग गुड जॉब। दैट टाइम देर वॉज सम इन्फॉर्मेशन ऑन न्यूज एंड ऑल दैट दैट देर आर सम टेररिस्ट दोज हुआ क्रॉसिंग द बॉर्डर, सो ही वेंट टू द सीओ एंड रिक्वेस्टेड हिम दैट आई वॉन्ट टू गो फॉर द ऑपरेशन, तो सीओ टोल्ड हिम नो यू सेंड समबडी यू विल नॉट गो, यू आर ऑलरेडी पोस्टेड आउट एंड यू हैव टू गो, दैट इज इनफ फॉर यू। सो दिस बॉय इंसिस्ट ऑन हिम एंड थर्ड टाइम ही गॉट रेडी took some people with him and went for the operation himself. Then CO warned him that go up to so-and-so location and conduct the operation.
1: Ji.
0: Take care. Apna dhyan rakho.
1: Ji.
0: But this boy, full of josh, and when he went with the ambus party as the ambus commander,
1: Ji.
0: He put the ambus over there and allowed the 6 terrorists to get into the ambus and then he opened the fire. First terrorist was killed by his fire, then other people personal engaged the ambus terrorist. One terrorist was running back towards the dhara, one of the dhara is the kind of type of makan
1: in
0: the pahadon mein jinme dangar unger bandhte hain, to usme wo shelter lene ke liye bhag raha tha. Umang ran parallel to him and shot at him also. Umang also got a shot from side from this fellow or any terrorist, those who are still alive.
1: आमने सामने की लड़ाई थी उस टाइम के साथ,
0: from 6 meters itself.
1: अच्छा,
0: each other shouted at each other and he said kafir and all that. He said bloody fool, I'll kill you, and he shot him down over there. And he told his operator ke रामकिशन अपने सीओ साहब को बोलो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, जवानों को फायर जारी रखे, कोई बच के नहीं जाना चाहिए और मेरे शायद कहीं लग गई है। बाय दैट टाइम द ऑपरेटर अप्रोच देम, उमंग वाज नो मोर।

0: अच्छा
1: तो उस मोमेंट पर उमंग भारद्वाज ने शहादत पाई उस ऑपरेशन के दौरान।
0: जी,
1: छह टेररिस्ट जो मारे गए
0: जिस
1: जिसमें
0: टाइम
1: दो को,
0: पंद्रह पंद्रह पहले मार चुके थे, छह ऐसे
1: जी
0: मारे,
1: छह इस
0: टोटल
1: ऑपरेशन में
0: ट्वेंटी वन
1: मारे।
0: टेररिस्ट।
1: जी आज हम शौर्य चक्र से सम्मानित मरणोपरांत कैप्टन उमंग भारद्वाज को याद करते हैं, उनकी बहादुरी, उनकी वीरता, उनके शौर्य के लिए, अदम्य साहस के लिए। सर, हम यहां पर, समय बहुत कम बचा है, मैं चाहूंगा कि जो मैसेजेस हमारे पास बहुत समय से आ गए थे उनको मैं आपको पढ़ करके बताऊं।
0: जी
1: गुड आफ्टरनून का मैसेज है हितेंद्र दास का असम से आपके लिए, और उसके बाद ये मैसेज है, गुड आफ्टरनून टू कर्नल रिस्पेक्टेड सर एनआरजे सर, आई एम राइटिंग फ्यू वर्ड्स टू आर इंडियन आर्मी। आई बो माई हेड विद इमेंस रिस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर आर बिलवड इंडियन आर्मी। यू प्रोटेक्टेड आर बॉर्डर्स विद अनवेवरिंग करेज, यू सर्व द नेशन विद सेल्फलेस डेडिकेशन, एंड यू इंस्पायर एवरी इंडियन विद योर सेक्रीफाइसेस। बिकॉज ऑफ यू वी लिव इन फ्रीडम एंड पीस, सो एंटायर नेशन इज फॉर एवर इंडेबटेड टू यू इंडियन आर्मी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये है सर शंकर लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका, सेक्टर 15, दिल्ली से।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: और आर्मी ऑफिसर को और आरजे सर को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। यशवंत आडमुटे धाराशिव हैं सर, ये महाराष्ट्र से, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। भारद्वाज साहब से मिलने में बहुत खुशी है जी, वेलकम टू द शो। श्रीकांत हैं सर, ये टोल गेट त्रिची तमिलनाडु से,
0: आई एम
1: और
0: ऑल्सो वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक
1: जी
0: यू वेरी मच।
1: चरण कुमार हैं सर, ये सन ऑफ श्री ब्रिजेश कुमार, विलेज बरकतपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, स्टेट यूपी से। और कर्नल भारद्वाज जी को मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत ये कह रहे हैं आपको सर।
0: हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, हम सबको, हमारे साथियों को, सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक।
1: जी और सर हैं ये शांताचारा बादीगार कोकानूर हरिहार से, देवनागरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। रिस्पेक्टेड सर, संदेश टू सोल्जर इज अ वेरी मीनिंगफुल एंड हार्ट टचिंग प्रोग्राम। यू प्रेजेंट इट ब्यूटिफुली, रिमाइंडिंग अस ऑफ द सेक्रीफाइसेस, सर्विसेस, करेज एंड पैट्रियटिज्म ऑफ ब्रेव सोल्जर्स हू प्रोटेक्ट अवर नेशन डे एंड नाइट एट द बॉर्डर्स। सोल्जर्स स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्रीमैन। देयर डेडिकेशन एंड सेल्फलेस सर्विसेज आर ट्रूली कमेंडेबल सर, ये कह रहे हैं। हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू फॉर ब्रिंग सच अ मीनिंगफुल प्रोग्राम टू अस, थैंक यू सो मच। आपने हमें सुना और आपने हमें मैसेज किया। और हैं सर ये कर्नल कमर भारद्वाज जी, जय हिंद। 71 आमने सामने के वार का विवरण सुनकर मन उत्साह से भर गया है। कमर जी का आज भी वही जज्बा महसूस हो रहा है सर, आपकी बात सुनकर के ये कह रहे हैं
0: थैंक यू सो मच।
1: जी और नाम शुभ संध्या, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, शायद राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से हैं ये। और ये है मैसेज, नमस्कार मेरठ से वीरू बख्शी, आपके टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी मेहनत करी आपने, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना। जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। और भी सर बहुत सारे मैसेजेस हैं और समय बहुत कम हमारे पास बचा है
0: अभी
1: ये।
0: अभी कुछ एक बार पूछ लो और ना।
1: जी सर, अब हम मैसेजेस बहुत सारे, मैं सब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय है बहुत कम हमारे पास। मैं सर बस चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपकी और आपके जो फैमिली है उसका किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, अब आप किन चीजों में इन्वॉल्व हैं सर रिटायरमेंट के बाद।
0: इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद में हमने एक स्कूल खोला था
1: जी,
0: बाय द नेम ऑफ कर्नल पब्लिक स्कूल, माना हुआ पब्लिक स्कूल है, सीबीएसई 10+2
1: जी।
0: एंड आवर वॉलीबॉल टीम हैव बीन अंडर 19, अंडर 17
1: जी,
0: नॉट ओनली नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन
1: जी।
0: एंड आई हैड ए होस्टल ऑल्सो इन द स्कूल इटसेल्फ फॉर द बॉयज।
1: आज सब आप सोशल सर्विसेज में भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, और आप जो लोग होते हैं जिनको मदद चाहिए सोशल सर्विसेज में, आप भी और आपका परिवार भी इसमें।
0: सोशल सर्विस के उमंग के जाने के बाद में
1: जी
0: हमने अपना ध्यान लगाया सोशल सर्विस एंड अदर थिंग्स के अंदर, जिसके अंदर के
1: जी
0: वन रैंक वन पेंशन, ये
1: अच्छा
0: हमारा पूरा फाइट था
1: जी।
0: और आज हमारे पुराने फौजियों को, खास करके वार विडोज एंड विडोज को
1: जी,
0: जो फायदा मिला है और हम सबको, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: और सर उसमें आपने पूरी मेहनत की,
0: उसमें सारा जो प्रोटेस्ट था बहुत, आई वाज लीडिंग वन एंड ऑल द प्रोटेस्ट वाज मी माय वाइफ एंड मिस जाखड़ इज वाइफ। एंड दूसरा एक मैंने बहुत बड़ा ये टोल का यहाँ पे होता था बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव,
1: अच्छा
0: एमबीएस मॉल के पास में,
1: जहाँ
0: दो दो ढाई ढाई घंटे ट्रैफिक

0: ट्रैफिक
1: जैम होता था और इवन एम्बुलेंस और प्रेग्नेंट वुमेन वर नॉट एबल टू गेट थ्रू एंड इन दैट वी आई वाज एबल टू गेट इट रिमूव्ड परमानेंटली फ्रॉम दैट.
0: आपने ये सब काम किए और बिकॉज ऑफ अभी आप आगे रहते हैं कुछ ना कुछ
1: बिकॉज ऑफ मोटिवेशन ऑफ अमंग एंड माई सेल्फ is fully I mean involved in all the thing and devoted to whatsoever maximum I can do I must do till I am able to do something.
0: बिल्कुल सर, बहुत ही जोश भरी आपसे हमने बातें की आज और हमने याद भी किया कैप्टन उमंग भारद्वाज को भी जिनको शौर्य चक्र से नवाजा गया मरणोपरांत उनकी बहादुरी के लिए. सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए. कर्नल कमर भारद्वाज सेना मेडल सम्मानित 1971 वॉर वेटरन. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद जय भारत भारत माता की जय
0: भारत माता की जय. और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी आपने हमें अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे और 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो पर प्रोग्राम जारी रहेंगे. आगे है सैटेलाइट्स मीना के साथ शाहिद को दें इजाजत.
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.